0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: This is a public service announcement.
14: The station that plays
15: foot tapping music.
16: Hazar 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats.
8: Wow, FM.
9: Only Tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
10: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
11: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
13: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
14: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: ये नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beat.
3: Wow, FM.
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: तेरा सुबह
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
9: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
8: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: Hits.
14: Music never sounded better.
15: Fazan 97.1 FM.
16: I love it.
17: We were good.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन
8: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07152।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

नकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: This is a
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ, ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स।

0: साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज़्ज़ा
1: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
2: हरियाणा सुपरमार्केट 126-132 ग्रैसिंगटन रोड NG8 3P Nottingham Monday to Saturday 8 AM to 8 PM Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket Freshness you can trust Prices you'll love
3: Hello kahan par hain aap
4: ji main kahan ho sakta hu या आपके दिल में या फिर ऑफिस में।
3: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
8: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
7: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
8: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
7: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
8: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
7: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
8: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
7: टेस्ट भी वाइब भी।
9: You are listening 97.1 FM.

0: मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजा 97.1 FM,
8: आई लव इट।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली सनअप फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैप पर। सेकंड लिसनर्स, आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैप ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का डोज। तो डियर लिसनर्स, पूरी कोशिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेके चलें हम और आप अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। पूरी कोशिश करेंगे कि मिलकर बनाएं आपके आज के इस दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा यादगार। कुछ सुनी जाए आपकी कहानियाँ और साथ ही साथ कुछ आपको सुनाई जाए अपनी दास्तान। और मजे की बात यह है कि शो में वो सभी टॉपिक शामिल किए जाएं जो कि हमारे सभी चाहने वाले लिसनर्स को पसंद है, ताकि बातचीत हो उस चीज के ऊपर जिसमें आपका इंटरेस्ट भी शामिल है। तो डियर लिसनर्स, इंतजार किस बात का है? अगर आपने अभी तक अपने इस खूबसूरत से नए दिन का आगाज नहीं किया तो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट, आप अभी से इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर सकते हैं हमारे संग, यानी रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैप के संग। सो लिसनर्स, सुस्ती काहली छोड़ दीजिए, साथ ही साथ अपने बिस्तर को कर दीजिए हैर आबाद, क्योंकि अब आपने स्टार्ट करना है एक नया एनर्जेटिक डे। और हर एक नए दिन की आगाज में होता है कि ये माइंड्स, ये थॉट्स माइंड में ज़रूर आती हैं कि इंसान थोड़ा सा लेजी हो जाता है और एक मिनट के लिए दिल करता है कि क्यों ना ये वक्त अभी रुक जाए, इंसान को कोई काम ना करना पड़े और इसी तरह से सुस्ती में, यानी कि आराम करते करते करते पूरा दिन गुजर जाए। लेकिन इस तरह से तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी को हमने और आपने मिलकर आगे बढ़ाना है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों के साथ साथ ये भी है कि ज़िंदगी की गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब हम अपने बिस्तर को छोड़ते हैं और एक खूबसूरत से नए दिन का आगाज़ करते हैं। सो डियर लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी कि मेरा और आपका रबते का नंबर। ये वो नंबर है जिस नंबर के थ्रू आप मुझे सुना सकते हैं अपनी दास्तान, और साथ ही साथ आपकी और मेरी हो सकती है कम्युनिकेशन। सो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरी सुने, आपके दिल का हाल सुने और आपका पसंदीदा म्यूजिक शो में शामिल करें, सो उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी बातों के लिए आपको डायल करना होगा ये नंबर। सो जल्दी से जाइए और इस नंबर को कर लीजिए सेव। वेल, आई गेस अभी तक आप सभी ने ये नंबर कर लिया होगा सेव, तो फौरी तौर पर जाइए इस नंबर पर और मुझे बताइए कि आप मुझे इस वक्त दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं, और अच्छा, मुझे सुनते सुनते सुनते आप साथ साथ क्या काम कर रहे हैं और इस वक्त आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। मैं भी थोड़ा ज़रा जानूं कि हमारे लिसनर्स किस तरह से अपने नए दिन के आगाज़ में क्या क्या चीज़ें सोचते हैं। सो फौरी तौर पर जाइए और मुझे टेक्स्ट करके बताइए। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैप की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।
और इसके साथ साथ रेडियो फजा 97.1 FM के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप हमारे साथ करना चाहते हैं रابطہ, तो उन सभी के लिए आप हमारी इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, बल्कि आपको रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैप से जुड़ी हर तरह की मालूमात भी इस वेबसाइट के थ्रू मिल सकती है। सो आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन कौन से शो में आने वाला है। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए जरूरी है कि आप इस वेबसाइट को ट्यून करें। उसके साथ ही बताती चलती हूँ कि हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को आप इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा। सिंपली आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजा 97.1 FM और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो जल्दी से जाइए, फौरी तौर पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको हमें ट्यून करने में कोई भी दिक्कत या दुश्वारी ना हो। वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने ये सभी तरीके आप सभी से शेयर कर दिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमारे संग जुड़ते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। वेल लिसनर्स, कहा जाता है कि गुफ्तगू वही अच्छी होती है, देर पा होती है, जहाँ कम्युनिकेशन हमेशा टू साइडेड होती है। सो इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि कुछ मेरी भी बातें शो में शामिल हों, साथ ही साथ कुछ आपकी भी कहानियाँ, दिलचस्प बातें मैं अपने शो में शामिल करूँ, ताकि इससे ये होगा कि हमारे लिसनर्स को ऐसा नहीं लगेगा कि ये कम्युनिकेशन वन साइडेड है, और ऐसा भी फील नहीं होगा कि टोटली आप ही की सुनी जा रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ आपकी बातें सुनी जाएंगी शो में और साथ ही साथ कुछ आपको अपनी कहानियाँ सुनाई जाएंगी। सो इसी तरह से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के स्टूडियो से आपको डीवा डायलॉग का ये सफर खूबसूरत लगेगा। वेल लिसनर्स, मेरी एनर्जेटिक बातें सुनते सुनते सुनते आई फील लाइक कि अभी तक आप लोग अपने बिस्तर से उठ चुके होंगे और फाइनली आपने कर दिया होगा उसको हैर आबाद। सो अगर आप अपने बिस्तर से उठ चुके हैं और इस कश्मकश में हैं कि किस तरह से इस दिन को प्रोडक्टिव बनाया जाए, सो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होगा। सिंपली आपको करना है एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट। कहा जाता है कि एक अच्छे दिन की शुरुआत हमेशा होती है एक अच्छे प्रोडक्टिव मील से। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ये जो दिन है ये बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत, सो आपको चाहिए एक्स्ट्रा एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? जी हाँ, ये एनर्जी आएगी एक अच्छे हेल्दी मील से। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ डीवा डायलॉग में कि हर दिन का आगाज़ किया करें एक अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि आपको पूरा दिन मेहनत करनी होती है, काम काज करने होते हैं और इस जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाना होता है। सो अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका दिन अच्छा शुरू नहीं होगा, और अगर दिन अच्छा शुरू नहीं होगा तो किस तरह से आप पूरा दिन मेहनत कर सकेंगे। सो ज़रूरी है ना कि आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्रेकफास्ट से। सो जी, जितनी भी हमारी डीवाज हैं जो इस वक्त हमें सुन रही हैं, फौरी तौर पर किचन में आ जाइए और बनाइए अपने लिए चाय का एक मग, और फिर इस खूबसूरत से मग के साथ आप बालकनी में खड़े होकर आज बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकती हैं और साथ ही साथ हमें ट्यून कर सकती हैं, क्योंकि हम पूरे कोशिश करेंगे कि आपका जो इंटरटेनमेंट का डोज है वो हम पूरा करें। सो बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो इस वक्त ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और निकल पड़े हैं घरों से बाहर। सो अगर आप हैं रास्ते में या फिर आप ड्राइव कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेफ एंड ड्राइव केयरफुली, क्योंकि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें पूरा फोकस ड्राइविंग पे रखना चाहिए, तो इधर उधर की आगे पीछे की टेंशनों से अपने माइंड को कर दें थोड़ी देर के लिए आज़ाद,
और अपना पूरा फोकस रखें ड्राइविंग पर ताकि आप आराम से, सुकून से, इत्मीनान से गाड़ी चला सकें। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप ड्राइव करते करते चाहते हैं कि आपका ये सफ़र या फिर आपकी डेस्टिनेशन बन जाए खूबसूरत, सो इस खूबसूरत से सफ़र को आप मज़ीद किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं हमें ट्यून करके। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ कि जब आप ड्राइव कर रहे हों तो ड्राइव करते करते किस तरह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। सो डियर लिसनर्स, अगर आप हैं अभी रास्ते में या पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन के करीब या फिर एंटर हो रही हैं ऑफिस में, सो घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लें। आई नो कि काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इन कामों के साथ ही तो फिर ज़िंदगी का असल मज़ा आता है। अगर इंसान बिल्कुल फ्री हो जाए, फारिग हो जाए, करने को कुछ काम ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, तो फिर कैसा ज़िंदगी का मज़ा। वेल लिसनर्स, ये सब बातें हो गई एक खूबसूरत नए दिन के आगाज की। अब जरा बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। सो डियर लिसनर्स, जैसा कि एक नए दिन के आगाज पर जरूरी होता है एक अच्छा हेल्दी मील, उसी तरह से एक नए दिन का आगाज जैसे कि मैं करती हूँ म्यूजिक के साथ, क्योंकि फॉर मी म्यूजिक इट्सेल्फ इज अ थेरेपी। और मुझे लगता है कि अगर आप एक्सपेंसिव थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको म्यूजिक सुन लेना चाहिए। सो इसी बात पर सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ये ट्रैक पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी पसंद के गाने शो में शामिल करूँ। सो वेल, आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने पसंद का गाना सुनाया जाए, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक है वीकेंड का, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर फैन ऑफ वीकेंड, सो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सूर्य सुनते हैं ये ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है मुलाकात, और फिर वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

0: sorry.
1: Well, listeners, इसी के साथ ही शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
14: Radio Bazaar 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डेप पर। वेल लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक जो कमर्शियल ब्रेक से पहले मैंने प्ले किया था? वेल, बहुत सारे लोगों को वीकेंड के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, डिपेंड करता है मूड पे। समटाइम्स दिल करता है कि कुछ एनर्जेटिक सा सुना जाए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई म्यूज़िक जब मैं सुनती हूँ तो मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये म्यूज़िक कम और नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सम डेज़ ऐसे होते हैं कि वही नॉइस वाला म्यूज़िक इंसान को अच्छा लग रहा होता है। सो कुछ इसी तरह से है कि वक्त के साथ साथ इंसान की प्रेफरेंस बदलती चली जाती है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक टाइम पीरियड पर इंसान को अच्छी लगती होती हैं, वहीं जैसे ही वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, तो इंसान की चॉइस भी बदल जाती है।

Well, listeners, उम्मीद करती हूँ ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। Well, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपका भी कोई पसंदीदा ट्रैक हम शो में शामिल करें, सो उसके लिए आप हमें 0115710097 इस नंबर पर जाके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी पसंदीदा गाने शो में शामिल किए जाएं। साथ ही साथ आपको बताती चलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी प्यारा सा अच्छा सा गाना अपने किसी प्यारे चाहने वाले को डेडिकेट करें, सो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। सो लाजमी उन गानों को शो में शामिल किया जाएगा। चलिए तो लिसनर स्टार्ट करते हैं हमारा आज के शो का फर्स्ट सेगमेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने शो का आगाज करें किसी पॉजिटिविटी से, अच्छाई से और पॉजिटिव बातों से। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोट्स, जो कि ना सिर्फ आपके इस दिन को बदल देंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी बदल देंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव ख्यालात हैं या फिर है उलझने, सो उन सभी उलझनों को सुलझाया जा सकता है इन्हीं मोटिवेशनल बातों से। सो आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई बड़ा फैसला लेने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर लोग क्या कहेंगे। सो इसी हवाले से है आज का हमारा फर्स्ट कोट, जो कि इस बात को रिलेट करता है और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का सलूशन देता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहां आपको करने पड़ते हैं कुछ ऐसे डिसीजंस, सो उस सिचुएशन को आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं ना सिर्फ, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मुस्बत बना सकते हैं। सो आवर फर्स्ट कोट सेज, डू नॉट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रोन आउट योर ओन इनर वॉइस। सो बेसिकली हमारा आज का फर्स्ट कोट ये कह रहा है कि दूसरों के ओपिनियंस को और दूसरों के शोर शराबे को इतना ज्यादा मत बढ़ने दें कि वो आपकी अपने अंदर की आवाज को मुतासिर कर दे। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट। हम सब की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? सो बेसिकली हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम अपनी काबिलियत और अपने सपनों का फैसला लोगों के कहने पर छोड़ देते हैं। लोग आपकी तकदीर या आपकी वर्थ नहीं बता सकते, वो सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक हमेशा आपको जज करते हैं। सो बेसिकली जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप अपनी असल आइडेंटिटी और अपना असल पैशन खुद ही खो देते हैं। सो फिल्टर आउट दीज नॉइजेज, इन लोगों की सुनिए जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा अपने दिल और अपने दिमाग का होना चाहिए। सो जस्ट ट्रस्ट द इंट्यूशन, वो आवाज़ आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती। सो दे लिसनर्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। सो सिंपली अगर हम बात करें तो कोट ये कहता है कि जिंदगी में कभी भी किसी दूसरे को खुद पर इतना हावी मत होने दें कि वो आपके अपने अंदर की इनर वॉइस को दबा दे। सो बेसिकली हर एक इंसान का अपना क्राइटेरिया होता है दूसरों को देखने का। हो सकता है दूसरों को आप पे वो चीज़ ना दिखाई देती हो जो आपको खुद में खुद दिखाई देती है। सो इस चीज़ का आप ही मुहासबा कर सकते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आप किस चीज़ में बुरे। सो आपको चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में कोई भी बड़ा फैसला करने लगे हैं या फिर इरादा रखते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद करने का, सो सबसे पहले आप क्या करें, एक पॉज लें, 5 से 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि ब्रेक ज़रूरी होता है जब इंसान कुछ बड़ा सोच रहा होता है। कभी भी जल्दबाजी मत करें क्योंकि जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, और इंसान जब कहता है ना कि अच्छा जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर लूँ, टाइम से सब कुछ मैनेज हो जाए, तो इस जल्दी के चक्कर में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। सो सबसे पहले ब्रेक लें, ब्रेक लेने के फौरन बाद। सो
शोर ब्रेक लेने के फौरन बाद आपको क्या करना है, आपको करनी है डिस्कशन अपने करीबी अजीजों अकारब से। सो अपने आसपास आपके क्लोज वंस में जितने भी लोग हैं उन सभी से डिस्कस करें, उनको अपने प्लान्स के बारे में, अपने आइडियाज के बारे में और अपने डिसीजंस के बारे में बताएं, और फिर ये जानें कि उनकी आपके इस डिसीजन को लेकर क्या राय है। और हमेशा याद रखें कि फाइनल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि दूसरा आपको उस तरह से नहीं देखेगा जिस तरह से आप खुद को देखेंगे। सो ओपिनियन लेना अच्छी चीज़ है, लेकिन हमेशा सोच समझकर फैसला करें और हमेशा खुद से फैसला करें। वेल, इतनी अच्छी सी मोटिवेशनल सी बात के बाद बनता है कि एक खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक सुना जाए। सो आइए मिलकर सुनते हैं कुछ अच्छा सा, मज़ेदार सा, चटपटा सा। सो वेल, हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने हमें ये गाना रिकमेंड किया है। सो उनकी भरपूर फरमाइश पर क्यों नहीं हम ये गाना शो में लाजमी शामिल करेंगे। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, एंड देन इसी तरह से गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा, होंगी बहुत सारी गपशप, कुछ आपकी कुछ अपनी। और इसके अलावा आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक अच्छा सा DIY मास्क, सो वो भी आपसे शेयर करूँगी, बट आफ्टर दिस सॉन्ग।

तो जी लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये ट्रैक? वेल, मैंने सोचा कि हमने काफ़ी ज़्यादा सीरियस मोटिवेशनल बातें की हैं, तो क्यों ना कुछ चटपटा सा गाना सुना जाए। सो देर इज़ अ टाइम इन माई लाइफ जब मुझे BTS बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। सो ये उस टाइम पीरियड की बात है, तो मैं ये गाना बहुत ज़्यादा सुना करती थी। सो आज रेंडमली जब मैंने ये गाना देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों ना अपने सभी लिसनर्स के साथ इस गाने को शेयर किया जाए। सो बेसिकली द सॉन्ग नेम इज़ डायनामाइट, और ये मेरा टीनेज का फेवरेट गाना है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमारे कॉलेज में पता क्या था, बहुत ही ज़्यादा BTS का क्रेज़ था। लॉट ऑफ गर्ल्स आर क्रेज़ी, जहाँ बात होती थी BTS की तो लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते थे। सो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हु वाज सिटिंग बिसाइड मी, तो वो लोग बातचीत कर रहे थे कि ऐसे ऐसे BTS होता है, ठीक है, एल्बम आई है न्यू, ये देखो वो देखो, ठीक है। सो मैं सोचना शुरू हो गई कि अच्छा ये BTS क्या चीज़ है। वेल, मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं

ही साथ परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ गाना गाते हैं. सो इनमें दो तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं. सो जब मैंने उनको बताया कि ऐसे मुझे BTS बहुत अच्छी लगी है और अब मैं भी इनकी फ़ैन बन चुकी हूँ, तो दे वर लाइक वेरी हैप्पी. और मुझे आज भी याद है कि उनमें से एक लड़की ने मुझे एक क्यूट सा मग गिफ्ट किया जिस पे BTS की पिक्चर्स लगी हुई थी, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा. क्योंकि आपको अच्छा लगता है ना कि जब आपको अचानक से कोई सरप्राइज़ दे, आपने मतलब इमेजिन भी ना किया हो, और आपको इतना क्यूट सा गिफ्ट मिले. सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड देन आज भी है वो कप, पिछले कुछ अर्सों पहले तक तो वो कप मेरे साथ ही था. सो उस पे थी BTS का एक मेम्बर है वी की पिक्चर्स. क्योंकि हमारी जब आपस में डिस्कशन हुई तो मैंने उसको बताया कि ऐसे BTS के ऑल मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, कूल हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है वो है वी. क्योंकि मुझे जो वी की वॉइस है वो थोड़ी सी आई फील लाइक थोड़ी सी मैस्कुलिन लगती है. जो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है, टैंगी है, लेकिन वी की आवाज़ एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. सो दैट्स द रीज़न कि मुझे BTS के सभी मेंबर्स में वी अच्छा लगा. सो जब अब कुछ अर्सा पहले जब रिसेंटली फीफा का फाइनल था, तो उस दिन BTS ने परफॉर्म किया. सो सडनली मुझे याद आया कि एक टाइम हुआ करता था कि जब मैं BTS को बहुत ज़्यादा सुनती थी. अब तो है लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी है, बहुत फास्ट चल रही है कि डेली बेसिस पर इतने काम काज करने होते हैं कि इंसान को टाइम नहीं मिलता कि वो वापस से पीछे जाए और अपने पास्ट के बारे में सोचे. सो बस लिसनर्स, यही ख्याल दिल में सोचते सोचते सोचते मैंने ये गाना आप सभी से शेयर किया. उम्मीद करती हूँ आपको ये गाना अच्छा लगा होगा. वेल, इस तरह से अगर आपकी भी किसी गाने से कोई मेमोरी जुड़ी हुई है तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं. सिंपली 01157100971 इस नंबर पर जाइए, जाके अपने नाम के साथ मुझे लिख कर भेज दें अपनी स्टोरी. सो मैं लाजमी रीड करूंगी और शो में ऑब्वियसली शामिल करूंगी. सो डियर लिसनर्स, इसी के साथ ही इस वक्त हमारे साथ मेरे और आपके बीच हाइल होने जा रही है एक अदद कमर्शियल ब्रेक. सो अब जाना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल ब्रेक के बिना शो कंप्लीट नहीं हो सकता. सो डियर लिसनर्स, चलते हैं आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब. आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के संग जुड़े रहिए. एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on Audible.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से। आई एम योर होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैप एंड द शो नेम डीवा डायलॉग।

सो जी लिसनर्स, इसी के साथ ही शो में एक और फरमाइश आ चुकी है गाने की, तो अब क्यों नहीं उसको भी पूरा किया जाएगा और लाजमी शो में शामिल किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं मजीद एक अच्छा सा प्यारा सा गाना और इस ट्रैक के उस पार हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का नेक्स्ट सेगमेंट।

सोचे लिसनर्स, अब जरा स्टार्ट करते हैं आज का अगला खूबसूरत सा कोट। सो अगर आप साथ में कोई गहरी बात सुनना चाहते हैं या फिर आपके माइंड में कोई हलचल चल रही है, कुछ डिस्टर्बेंस है, सो आप इस चीज़ को इस कोट के थ्रू दूर कर सकते हैं।

सो हमारा जो आज का सेकंड कोड है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बात कितनी मुश्किल है, कितनी डिफिकल्ट सी है, सो कितनी सादा और कितनी पावरफुल सी ये बात है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। सो बेसिकली होता ये है कि जिंदगी में गिरना, नाकाम होना या गलती करना कोई वीकनेस नहीं होती। असली डिफीट तो तब होता है जब आप गिरने के बाद आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। अच्छा, बेसिकली हमारी सोसाइटी में फेलियर को एक स्टिग्मा बना दिया जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। हर बार जब आप गिरकर दोबारा खड़े होते हैं तो आप पहले से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, पहले से भी ज्यादा रिलायबल और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर उभरते हैं। सो बेसिकली मिस्टेक्स आर जस्ट लेसन्स, नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। जिंदगी आपको हर सुबह एक नया चांस देती है, सो डोंट गिव अप।

सो माय डियर लिसनर्स, ये था हमारा आज का सेकंड कोट। तो सभी लिसनर्स, आज के सेगमेंट में जो दो कोट या जो दो बातें हम सब ने की, उन में से जो मीनिंग अहस हुआ है वो कुछ यूं है कि अपनी आवाज़ को दबाना छोड़ दो। दुनिया का शोर टेम्परेरी है, आपका अपना यकीन परमानेंट है। और द सेकंड कोट सेज, कभी हार मत मानो। जब तक आप दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। सो डियर लिसनर्स, इन सभी बातों पर लास्ट में गौर करिएगा। एंड आई फील लाइक के ना सिर्फ ये बातें आप सभी की जिंदगी को तब्दील करेंगी, बल्कि हो सकता है कि आपको वो हिम्मत, वो ताकत, वो कवरेज दें जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपको दे। होता है ना कि समटाइम्स इंसान का दिल करता है कि कोई इंसान उसे मोटिवेट करे, ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आए, और उसकी ज़िंदगी में जो डीमोटिवेशन चल रही है उसको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाए। सो इसी तरह से होता है कि ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को एक अच्छे पीस ऑफ एडवाइस की ज़रूरत होती है। सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हम शो में इसी तरह के मोटिवेशनल कोट्स को शामिल करें, ताकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, साथ ही साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका।

सो लिसनर्स, ये थे आज के दो इंटरेस्टिंग से कोड. वेल, आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ दीज कोड्स. अब जरा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब. लेकिन आई थिंक सो मैंने आप सभी को बताया था कि आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा DIY मास्क जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, साथ ही साथ आपको एक इंस्टेंट ग्लो देगा. सो जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के इस मौसम में स्किन को जरूरत होती है, सो स्किन को जरूरत होती है हाइड्रेशन की. सो अब आप जरूरी नहीं कि केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करें, केमिकल्स यूज करें या फिर बहुत ही ज्यादा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, तभी जाके आपकी स्किन खूबसूरत दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी. जस्ट फ्यू स्टेप्स को आप फॉलो करके भी अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं. सो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक सिंपल सी शॉर्ट सी डेली बेसिस की रूटीन, जो कि जितनी भी हमारी डिवास हैं, स्पेशली वर्किंग वूमेंस, वो इस रूटीन को फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है एंड जस्ट फ्यू इंग्रेडिएंट्स जिनका इस्तेमाल करके आप खुद को खूबसूरत बना सकते हैं. सो बेसिकली खूबसूरती हर एक इंसान के अंदर होती है और ये बस इंसानों के देखने का नज़रिया होता है. हर एक इंसान की अपनी आँख होती है, यानी कि कहते हैं ना कि सबकी अपनी आँखें, सबका अपना चांद. सो आप अपनी आँखों के अकॉर्डिंग दूसरे इंसान की खूबसूरती को जज कर सकते हो. सो वेल, आई फील लाइक बहुत सारे लोग एंशिएंट टाइम्स में समझते थे कि जिन लोगों का स्किन टोन फेयर है वही प्रिटी दिखते हैं. लेकिन फॉर मी ब्यूटी इज नॉट द कलर, इट्स अबाउट द करेक्टर, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ एंड हाउ यू स्पीक टू द अदर पीपल एंड हाउ यू स्टैंड इन दिस इरा इन 2026. सो मेरे लिए तो खूबसूरती का ये मतलब है. अब आप लोगों के लिए खूबसूरती का क्या मतलब है, आप अपनी राय मुझसे शेयर कर सकते हैं 01157900971. सो बेसिकली स्किन केयर का काम ये होता है कि वो आपको प्रिटी दिखाए, आपकी स्किन को इन्हेंस करे, एक्सपोलिएट करे, ना कि आप को गोरा बनाए या फिर फेयर बनाए. आई फील लाइक मुझे तो पर्सनली डस्क की स्किन टोन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फेयर टोन. सो मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी स्किन थोड़ी सी डस्की हो. सो अब तो है सन टैन की वजह से काफ़ी हद तक हो ही चुकी है. सो बातों को करते हैं साइड पे और स्किन केयर रूटीन की जानिब बढ़ते हैं. सो द स्किन केयर रूटीन इज़

0: So, dear listeners,
1: it's commercial time.
2: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आई एम योर होस्ट वन एंड ओनली ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फ़ज़ा 97.1 एफएम एंड ऐप पर। सो जे लिसनर्स, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए ताकि मैं आपको बताऊं अच्छे से DIY स्क्रब के इंग्रेडिएंट्स। सो आई फील लाइक आप सभी ने कर लिए होंगे। अब जरा शेयर करते हैं आप सभी से इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से आपने इसको बनाना है और फिर किस तरह से यूज़ करना है।

सो सबसे पहले हम सिंपल स्क्रब की बात कर लेते हैं, जो कि सिंपल हनी ऑलिव ऑयल और शुगर स्क्रब कहलाता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सिंपली शुगर स्क्रब है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं स्किन एक्सफोलिएट करने के लिए। सो ये स्क्रब स्किन को ड्राई किए बिना डीप मॉइस्चर और ग्लो देते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट शेयर करते हैं। सो इस DIY स्क्रब को बनाने के लिए सिंपली आपको चाहिए शुगर, जो कि बिल्कुल बारीक पीसी हुई हो। आप 1 से 2 कप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल बारीक पीसी हुई चीनी होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर वो अच्छी तरह से स्क्रबिंग का काम नहीं करेगी। साथ ही साथ अब ज़रा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। सो हमें चाहिए जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल, ठीक है, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो घर पर। सो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच इसको ले लेना है, और साथ आपको चाहिए 1 खाने का चम्मच हनी। सो सिंपल से ये इंग्रेडिएंट्स है जो आई फील लाइक हर घर में मौजूद होते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए लेमन जूस 3 to 4 ड्रॉप्स अगर आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो। अदरवाइज अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर हल्का सा भी केमिकल बर्दाश्त नहीं कर सकती, फौरन से रेडनेस हो जाती है, तो आपने क्या करना है कि आपने लेमन जूस स्किप कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।

सो ये थे इंग्रेडिएंट्स। अब जरा आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इस स्क्रब को बनाना है। सो आप एक साफ बाउल ले लें, ठीक है, उसमें शामिल करें चीनी, चीनी के साथ ऑलिव ऑयल, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। जैसे ही अब आपने इनको मिक्स कर लिया, अब इसमें ऐड होगा शहद, साथ ही साथ लेमन जूस, और फिर अगेन इनको अच्छे से मिक्स कर लें। सो बेसिकली इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका एक नेचुरल शुगर स्क्रब हो जाएगा तैयार। ये स्क्रब टोटली ऑर्गेनिक है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, प्लस आपको इंस्टेंट ग्लो भी देगा। सो जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और जितनी भी हमारी वर्किंग वुमेन है, डेली बेसिस पर मेरी तरह आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, जिसके तहत आप इस चीज़ को फेस करते हैं कि कितनी आजकल टैनिंग हो रही है। सो अगर आप इस स्क्रब को वीक में 2 to 3 times यूज़ करेंगी, सो यू विल सी द रिज़ल्ट क्लियरली। आपको पता चलेगा कि आपकी जो बॉडी है उसका कलर इन्हेंस हो रहा है, स्किन ब्राइटन अप हो रही है, प्लस जितनी भी डेड स्किन्स थी, डेड पार्टिकल्स थे, वो सब रिमूव हो रहे हैं।

सो जी लिसनर्स, ये था सिंपल सा DIY स्क्रब। अब जरा बात करते हैं एक और स्क्रब की। ठीक है, ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली ये टैन को रिमूव करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम एक इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रहे हैं वो टैनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो ये जो स्क्रब है, ये बॉडी टैन को हटाने में, स्किन को टाइट करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब जरा इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। सो जी, स्क्रब को बनाने के लिए सिंपल आपको चाहिए शुगर 1 and 2 कप, कॉफ़ी पाउडर चाहिए आपको 2 खाने का चम्मच, और साथ ही साथ आपको चाहिए कोकोनट ऑयल 3 to 4 खाने का चम्मच। सो वेल, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, जस्ट हमने एक कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड किया है एक्स्ट्रा, जो कि इसको मज़ीद अच्छा और बेहतर बना देगा। सो सिंपली अब आपने इसको किस तरह से बनाना है, चीनी और कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, याद रखिएगा कि चीनी बिल्कुल बारीक पिसी हुई हो और कॉफ़ी पाउडर ड्राई हो। फिर आपने इसमें ऐड कर देना है कोकोनट ऑयल और एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है। सो अब इस्तेमाल करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने चेहरे या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पर आराम से हल्का सा थोड़ा सा गीला करके, ठीक है, ताकि आपके ओपन पोर्स खुल जाएं। ठीक है, एंड देन आपने इसको इमल्सिफाई कर लेना है और बिल्कुल लाइट लाइट स्क्रब करना है। एंड यू विल सी के जब आप 2 से 3 मरतबा इस स्क्रब को यूज़ करेंगी तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे, और साथ ही साथ आपको फील होगा कि अब स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है और डलनेस ख़त्म हो चुकी है। सो ये थे हमारे आज के 2 DIY स्क्रब। आई फील आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मैं अच्छी अच्छी सी होम रेमेडीज़ लेकर आऊँ और भी इस तरह के ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स, ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर के हवाले से, तो आप मुझे बता सकती हैं 01157100971 इस नंबर के थ्रू। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी सी रेमेडीज़ लेकर आऊँ, ताकि हमारी डिवास इन रेमेडीज़ को यूज़ करके मज़ीद खूबसूरत, प्रिटी और ग्लोइंग बन जाएं। सो डी लिसनर्स, ये थी आज की कुछ ब्यूटी टिप्स। अब ज़रा बात करते हैं आज की स्पाइस किचन की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बातें करते करते करते वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और कब वक्त गुजर जाता है और शो अपने इख्तिताम के करीब पहुंच जाता है। सो आज के स्पाइस किचन की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है, और बच्चे तो आई फील एक ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इट्स अ कोरियन रेसिपी। सो आज हम बनाएंगे कोरियन हॉट पॉट। सो इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। सो इसके लिए हमें चाहिए कोरियन रेड चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून। सो अगर ये ना हो तो आप 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पेस्ट या फिर 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए कोरियन चिली फ्लेक्स या पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून्स, मिंस्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून यानी कि पिसा हुआ गार्लिक, शुगर 1 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून। सो द पॉट फिलिंग के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, किमची 1 कप, सॉसेजेस हॉट डॉग्स 1 कप, कैन बीन्स 3 to 4 टेबलस्पून, मशरूम्स 1 कप, टोफू 1 कप, जिनको बिल्कुल अच्छे से क्यूब्स और स्लाइसेस में हमने कट कर लेना है। साथ ही साथ हमें चाहिए ग्रीन अनियंस 1 कप, रामेन नूडल्स 1 पैकेट, ओवर चैटर्ड या फिर प्रोसीड चीज स्लाइस 1 and 2 स्लाइस। सो ये थे इंग्रेडिएंट्स, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ मिस हो जाता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब जरा बात करते हैं इसको बनाने की। सो सबसे पहले एक छोटा बाउल में हम क्या करेंगे, कोरियन रेड चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, मिंस्ड गार्लिक, शुगर और ब्लैक पेपर को थोड़े से पानी में अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब एक बड़े शैलो गहरे पॉट में पानी में
सेंटर में किमची और बेक्ड बीन्स रखेंगे, ठीक है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट जैसे कि सॉसेज है, टोफू, मशरूम्स, ग्रीन अनियंस को पॉट के साइड पर गोलाई में सुंदर तरीके से अरेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में तैयार की हुई कोरियन स्पाइसी पेस्ट डालें और ऊपर से गरम चिकन यखनी डाल देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। जब उबाल आ जाए तो 10 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से इन्हेंस हो जाएं, मिक्स हो जाएं और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि कच्चा कच्चा जायका आ रहा है। अब बारी आती है नूडल्स को और चीज़ को ऐड करने की। सो जब सब्जियां और मीट अच्छे से पक जाए तो सेंटर में हम ऐड कर देंगे रामेन नूडल्स, साथ ही साथ चीज़ स्लाइसेस। सो अब हम कवर कर देंगे 2-3 मिनट्स के लिए, अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और नूडल्स नरम ना हो जाएं। सो जैसे ही हमारी चीज़ मेल्ट हो गई और नूडल्स कुक हो गए, सो आप टेबल पर हॉट पॉट को शिमर करते हुए सर्व करेंगे। सो ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की रेसिपी। वैसे आज जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था, सो मैंने सोचा कि इस शॉर्ट से लिमिटेड से टाइम में क्या ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो कि बहुत ही सिंपल सी हो। सो ये रेसिपी ज़रा डिफरेंट है, ज़रा हट के है। आप लास्ट में ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और आई थिंक सो हॉट पॉट एक ऐसी रेसिपी है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल है, लोग क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जब आप किसी भी 5-स्टार होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। सो आपने क्या करना है, आपने इसे घर पर ट्राई करना है और इन्हीं छोटे से सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स में बनाकर अपनी फैमिली को सर्व करना है। सो ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। आई होप यू लाइक द रेसिपी। इन केस इफ़ यू मिस एनी इंग्रेडिएंट्स सो जस्ट टेल मी, मैं आपको सभी डिटेल्स में दोबारा बता दूंगी। सो इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए एम्बिशन के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, साथ ही साथ उन सभी लोगों का जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड है, उन सबका भी ख्याल रखिए। खुश रहिए और पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती है। इंसान कभी भी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता और हमेशा खुद को दूसरों से पीछा समझता है। सो हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना, हमने खुद को किसी से भी पीछे नहीं समझना। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। वेल, इसी के साथ ही शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। जाते जाते एक बार फिर से कहूँगी कि बी पॉजिटिव और आज के जो कोर्ट्स हैं इनको माइंड में रखिएगा और इन पर लाजमी अमल करिएगा। और मुझे अपनी आरजे ज़ैनब फातिमा को और टी वाई डायलॉग के इस सफ़र को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते ये खूबसूरत सा सॉन्ग आप सभी के लिए प्ले करती चलती हूँ ताकि आप इसको इंजॉय करें और मैं भी इसको इंजॉय करती हूँ। और आपसे मुलाकात होती है कल। टेक केयर, बाय बाय।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, maths and science? Slasa Tuition.

0: Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से जी मैं हूँ आपकी आरजे दीवर एंड ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलूराज। खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप हमेशा की तरह सुन रहे हैं मेरी ही आवाज़ खूबसूरती यानी कि सलूराज की। और बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन, और उसी के साथ साथ हाँ दिन का आगाज भी अच्छे से हुआ होगा। जाहिर सी बात है हमारी इतनी प्यारी प्यारी ट्रांसमिशन्स आपके साथ जो है कंटिन्यू होती हैं और आपको आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने में हम आपका साथ देते हैं। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार बताऊँगी, बड़े से पहले बताइएगा क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या जो लोग ऑफिस की तरफ निकल आए हैं दिन कैसा गुजरा है। अगर ऑफिस में आते साथ पड़ चुकी है बॉस की डांट तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐसा कर सकते हैं कि अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक लेने के बाद किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, वहां पर जाकर आप फजल 97.1 FM का ट्यून कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तनहाई का साथी सिर्फ और सिर्फ फजल 97.1 FM ही है। या फिर अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि चोरी छुपे जो हेडफोन्स जो है ना वो लगा लें, तो वो लगा कर आप हमें ज़रूर सुनिएगा। बल प्रोग्राम में शामिल होकर मैं मुझे का एहसास भी दिलाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका कार सबसे पहले बता देते हैं 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को करना है सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है और बताना है कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजी किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है सवाल, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियोफजा 97.1 FM के नाम से। कहीं पे गाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो मुझे फ़ौरन से मैसेज करके बता दीजिएगा। ना कि सिर्फ आप मैसेजेस कर सकते हैं बल्कि आप प्रोग्राम में अपनी आवाज़ को भी शामिल करवा सकते हैं। आप हमारे साथ लाइव कॉल के थ्रू प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होकर हमें अपना नाम, पैगाम, जो भी आपने हम तक पहुंचाना है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी बात करनी हो तो हम हाजिर हैं। 2 घंटे का टाइम हमारा आपका रहता है, मीन्स कि ये वो गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती है, यानी कि वक्त के साथ चलती है। प्रोग्राम में मज़ीद प्रोवाइड करते हैं हम आपको इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होती है कम्युनिकेशन और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। तरीकाकार बड़ा ही आसान सा है, आपको बता चुकी हूं, बट जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं बी केयरफुल एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, और जो लोग मुझे घर बैठे सुन रहे हैं घर बैठे ये बतीने मुझे सुनिए, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है आपने मुझे काम काज करते वक्त ही सुना है, इसके अलावा आपने करना क्या है, और या तो फिर यही सोचा जा रहा होगा कि दिन के खाने में क्या बनाया जाए, आज के दिन में क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, या किसी प्यारे को कुछ करने के लिए क्या बनाया जाए। वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से होके आता है, तो किसी को मनाना है, किसी को राजी करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मजे मजे के खाने बना के उनको खिला सकते हैं। एक और मैं शुभ में भी मैंने देखा था कुछ मीठा हो जाए, मतलब कोई मज़े सा जो है वो मीठे में कुछ बना लें, और जो आपसे खफे हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, जिनका मूड सुबह सुबह आपने ख़राब करके भेज दिया। बल तो हम करते नहीं हैं, बट सुबह सुबह उठते साथ किसका मूड अच्छा होता है। कोई मज़े की चीज़ बना लें घर में और जो है वो उनको खिलाएं, और उम्मीद करेंगे कि वो जो है, उम्मीद नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, और वैसे भी अच्छे से बात कर ही लेंगे अगर मूड अपना ठीक होगा तो। हम लोग जो है ना वो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं, जब अपना मूड ठीक होगा सब से बात करेंगे, अगर मूड नहीं ठीक होगा तो भाई किसी को बुलाना ही नहीं है। और मोस्टली जो है ना सुबह के टाइम चिड़चिड़ापन जो है ना इंसान में बहुत ज़्यादा होता है, मेरे में खुद बहुत ज़्यादा होता है। सुबह उठ के किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी को बुलाने का मन नहीं करता, और फिर जो लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं तो दिल करता है कि उनको उठा के बंदा कहाँ का कहाँ ही मार दे। लेकिन बहुत सी ऐसी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अमूमन जो है वो रिश्ते सामने ऐसे होते हैं, कभी बहन भाई होंगे, या फिर आपके हस्बैंड होंगे, या फिर आपकी वाइफ होंगी, या आपकी वालदा या आपके वालिद साहब होंगे, इस तरह जो है ना होते हैं। फिर वो बहुत सी चीज़ों को जो है ना हमने हैंडल करना होता है, बहुत सी चीज़ों को हमने बर्दाश्त करना होता है। बर्दाश्त की सलाह जो है ना वो किसी किसी में होती है, और होनी भी चाहिए। सब्र है ना, सब जो है ना इंसान में आ जाए तो इंसान हर जगह पे सरवाइव कर सकता है। लेकिन फिर उसी के साथ साथ ये बात शुरू कर देते हैं कि रेसिपी में कोई आपको मेरे से मदद चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। खाने में अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए, कोई रेसिपी मेरे तरीके से बनाना चाहें तो मैं वो भी आपको बताऊँगी। या फिर ऐसा कह देते हैं कि अगर आप मुझे कोई रेसिपी अपनी बताना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं आगे अपनी लिस्ट तक शेयर करूँ, सो मैं ज़रूर करूँगी। आपने बस मुझे छोटा सा मैसेज कर देना है, और उस मैसेज के साथ मुझे रेसिपी के जो है वो तरीक़ाकार सारा बता देना है। हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल किया जाता है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक शामिल करते हैं, उसके हवा से ही डिस्कस जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी कोशिश ही रहती है कि प्रोग्राम में ना सिर्फ अपनी पसंद का टॉपिक शामिल किया जाए बल्कि आपकी पसंद के टॉपिक्स को भी शामिल किया जाए, ना सिर्फ आपको अपनी राय बताई जाए बल्कि आपके बताए गए टॉपिक्स पे जो है इन्फॉर्मेशन निकाल कर मैं आपके साथ शेयर करूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मुझे जितना मुझे वो कहते हैं ना इल्म होता है उस बारे में, मैं वो अपने आप अपनी तरफ से आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, और कुछ चीज़ों का मुझे भी नहीं होता, जाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ। कुछ कुछ होता है कि हर इंसान को हर बात का इल्म नहीं होता, कभी कभार जो है वो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से अनजान होते हैं, और कहते हैं कि कभी कभार कुछ चीज़ों से अनजान रहने में ही बेहतरी होती है। वल मौसम तो बड़ा ही प्यारा सा है, और मौसम अगर प्यारा है तो दिन की आज के दिन के हवाले से बात भी कोई अच्छी सी रखी जाएगी प्रोग्राम में, ना कि बूसी बूसी बातें शामिल की जाएंगी, यानी कि बोंगी बोंगी बातें। सुबह प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ, पर मुझे मेरी कोशिश ही रहती है कि आपकी फरमाइशों को प्रोग्राम में पूरा किया जाए, बट ऐसा हो भी नहीं पाता। मोस्टली जो है मेरे साथ ये चीज़ हो जाती है कि मैं जो हूँ ना अपनी पसंद का ट्रैक प्ले करने लगूँ तो मेरे पास फरमाइश आ जाती है, बट फरमाइश को ही पूरा करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। अभी के लिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ, अभी तक के लिए स्टे ट्यून, कहीं नहीं जाना, अपनी पसंद की फरमाइश हमसे ज़रूर कीजिएगा, हम आपकी पसंद का इंतज़ार करेंगे। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं अपने मनपसंद ट्रैक, तब तक आप सुनिएगा सलूर राज के पसंदीदा ट्रैक्स। लेकिन इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप भी मुझे अपनी पसंद बता सकते हैं। प्रोग्राम में कोई टॉपिक शामिल करवाना चाहें, कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें, या कोई नसीहत किसी को देना चाहें जिसको आप अपनी मुँह ज़बानी नहीं दे सकते, जिसके सामने आप बोल नहीं सकते, जिसके सामने आप बोलते हुए डरते हो, सो वो मुझे उनके बता दीजिएगा, छोटा सा मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्रोग्राम में उसको भी शामिल कर दूँगी। प्रोग्राम का गाज एक ट्रैक के साथ करेंगे, इसके इस बार आपसे आकर टॉपिक के हवाले से डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक जो प्रोग्राम में शामिल करवाना है वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद एक और छोटी सी फरमाइश को पूरा करके फिर उसको जो है हम प्रोग्राम में टॉपिक के बारे में डिस्कस स्टार्ट कर देंगे। वक्त अभी बहुत ज़्यादा है मेरे आपके दरमियान, अभी मैं यही बोल रही हूँ, पर वो ये सीन आ जाता है कि जब बातें करने का आपसे मज़ा आने लग जाता है तो प्रोग्राम में या तो कमर्शियल ब्रेक हो जाती है, या फिर यूँ होता है कि टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। हेलो सारे गेन बता देते हैं जिन नए लोगों ने आज और अभी फर्स्ट 97.1 एफएम को ट्यून किया है। बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का, प्रोग्राम में शामिल होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। हमारे स्टूडियो के अलावा चैनल पर मैसेज करके नंबर आपको नोट करवा देती हूँ, 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। और अगर आप अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं हमारी तरह, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर गूगल पर सर्च करके radiofaza.com.au के वहाँ पर आप हमारी वेबसाइट पर हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं और वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो बता दी जाएंगी। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्रोग्राम में जो है वो छलकते पड़ते ट्रैक ही शामिल किए जाएं। आपसे गुजारिश है कि अगर कोई ट्रैक, किसी भी तरह की ट्रैक की फरमाइश करनी है तो कुछ इस तरह से कीजिएगा कि ट्रैक में तो एनर्जी हो ना के सैड ट्रैक हो, क्योंकि सैड ट्रैक शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि माहौल जो है वो सेंटीमेंट ही नहीं बनाना, हमने माहौल को अच्छे से अच्छा बनाना है। सो उसके लिए हमें ट्रैक का सहारा लेना पड़ता है। सो वेल, आइए चलते हैं इस ट्रैक की जानिब। मौसम अच्छा और सरताज की आवाज़ ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैब। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सरराज की। उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटी सी मंच ब्रेक करा हुई थी, ब्रेक पा रही है आपसे मुलाकात। और साथ ही साथ में जो है वो अभी वक्त हुआ जाता है मेरा मैंने एक छोटे से ट्रैक का, क्योंकि मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि अपनी आवाज़ भी आपको सुनाऊँ लेकिन ट्रैक भी आपके साथ शेयर करूँ।

जी हाँ, तो वन सेगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलोड़ा। आज की सवलों के साथ साथ अभी जो है वो प्रोग्राम में एक और छोटे ट्रैक की फरमाइश मौजूद थी, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी पूरा कर दिया जाए। सुनते हैं इस ट्रैक, इस ट्रैक पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फजा 97.1 एफएम एंड

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने हैं लंच बॉक्स लाउंज आवाज, आप सुने सलू राज की सलू। उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि वाला ट्रैक दोबारा से प्रोग्राम में शामिल हो गया, तो हम इसको फौरन से चेंज कर देते हैं। अभी जो है ना, मेरे पास फरमाइश भी है मौजूद, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक का भी वक्त हुआ जाता है। सवाल आइए सुनते हैं नेहा कक्कड़ की इस खूबसूरत आवाज़ को। इस आवाज़ के सवाल ही आपसे मुलाकात, साथ में रोहन प्रीत की भी आवाज़ शामिल है। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो

0: गए हैं।
1: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
1: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: डिलिशियस प्रीमियम स्टेक, जूसी बर्गर्स, क्रीमी पास्तास और फ्रेश ड्रिंक्स, सब कुछ एक ही जगह।
1: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
1: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स टाउन, आवाज आप सुन रहे हैं सलवराज की सबलसी के साथ साथ। प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहेगा जी को ठीक 2 बजे तक। स्टूडियो की डाउन मशीन पर वक्त हुआ जाता है हमारे अगले घंटे का, यानी कि एक घंटा हमारा शुरू हो चुका है। सो अभी जो है प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हुई थी, कमर्शियल ब्रेक उस बार ही आपसे मुलाकात। और मेरे ख्याल में एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था और वो सही से सुन भी नहीं पाए होंगे आप, क्योंकि प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक जो आ गई थी। पर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे आज के दिन के हवाले से। जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया था, उसके हवाले से कोई डिस्कस करना चाहे, कोई डिस्कशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाना चाहे, या फिर कोई ट्रैक हमें डेडिकेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किसी को नसीहत करवाना चाहें तो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि उनको जिनको आप अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, जिनको आपको लगता है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो खफा हो जाएंगे, तो मुझे चुपके से उनका मैसेज भेज दीजिएगा। मैं वो प्रोग्राम में उसको नाम लेके उनका नाम लेके उसको शामिल कर दूँगी। अभी जो है वो एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, उसको शामिल करते हैं। इसके उस पर फिर आके आपसे गपशप का सिलसिला जारी करेंगे। नेहा कक्कड़ की आवाज़ को सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप। मिलते हैं इस खूबसूरती आवाज़ के उस पार। साथ दीजिएगा और साथ होने का हमेशा की तरह एहसास भी दिलाएगा, क्योंकि प्रोग्राम में हम आपके साथ रहते हैं ठीक 2 बजे तक। दिल

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरवराज की। सुन उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था और साथ ही में हम रहे आपके साथ साथ।

प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल किया था उसके बाद से डिस्कस मेरे पास मौजूद है, लेकिन अभी एक और फरमाइश मेरे पास आन पहुंची है। जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 7.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। मैंने सोचा क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ताकि आपके साथ गपशप का सिलसिला भी कर लिया जाए। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं प्रोग्राम में जो है वो पीछे से ट्रैक भी प्ले कर दूँ, साथ आपके साथ गपशप भी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब पसंद की चीज़ लगी हो और बीच में कोई बड़बड़ा रहा हो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको गुस्सा ना ही दिलाएं, और गुस्सा आने वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा टाइम है। और मुझे वही बात आ गई कि जब गपशप लगाने का आपके साथ मजा आने लग जाता है तो प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो जाता है। आज के दिन के बाद हमारा टॉपिक था वो कुछ इस तरह से था कि हम लोग मतलब अभी की जो ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, उनको एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम आने वाली खुशियों के पीछे भाग जाते हैं। अब मुस्तकबिल की परेशानी से जो है ना, हम प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाते। सो वो छोटी छोटी खुशियां वो लम्हे जो आपको वहाँ से वहाँ तक ले जाएंगी, जहाँ पर आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपने कहाँ जाना था कहाँ नहीं। छोटी छोटी खुशियाँ वो लम्हे होते हैं जो बाहर जो है वो मामूली लगते हैं, मगर ये हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अक्सर हमें बड़ी कामयाबी जो है ना, बड़ी नौकरी या फिर नई गाड़ी या किसी बड़े मौके का इंतज़ार करना होता है, लेकिन इस इंतज़ार में जो है ना, रोज़मर्रा की छोटी छोटी खुशियां जो है ना, वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। सो कोशिश यही करें कि रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी खुशियां ना, इनको नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि आपके आने वाले कल के लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है।

जब आप अपने आज को इंजॉय करेंगे ना, तब आप कल को भी इंजॉय कर पाएंगे। वो फिर वही बात आ गई कि कल की टेंशन में जो है ना, आज की दी गई खुशियों को इग्नोर मत करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो कभी कभार ऐसे मौक़ों से नवाजती है जो इंसान को कभी कभी खुश करते हैं।

उसी के साथ साथ प्रोग्राम में आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी करेंगे और टॉपिक के बाद फिर डिस्कस करेंगे। और अभी जो है मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश है, उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं और फिर इसके इस पर आपसे मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को यहीं से आगे सिलसिले को स्टार्ट करेंगे। सो आपको एक बार अगेन टॉपिक बताती हूँ। टॉपिक आज का कुछ इस तरह से था कि हम अपने आने वाले दिन में जाना नई नई खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियों को क्यों मिस कर देते हैं और मिस करना नहीं चाहिए, इसके बाद से डिस्कस जो है करेंगे। अभी ये छोटी सी एक फरमाइश है उसको पूरा करते हैं, इसके उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फॉर 107.1 FM एंड ऐप, मिलते हैं इस छोटे से ट्रैक के उस पर।

0: अभी के लिए जो है ना वो मैंने रैप ले किया था, लेकिन उसी के साथ साथ एक छोटा सा पैगाम आप तक पहुंचाना, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। सो आइए सुनते हैं उसको, उसके बाद रहती है आपसे मुलाकात।
1: Childhood vaccinations give your children the best protection and prevent over 5,000 deaths each year in England. Childhood infections can cause serious illness, hospitalization, and lifelong disabilities. Childhood infections like measles and whooping cough spread easily in our communities. If your child isn't vaccinated, they're not protected. All childhood vaccinations offered by the NHS have been used in millions of children worldwide and have an excellent safety record. It's important that vaccines are given on time for the best protection. But if your child has missed a vaccine, contact your GP to catch up. Are your child's vaccines up to date? Check their Red Book or speak to their GP practice. For more information, visit nhs.uk/childhoodvaccinations.
0: जी हाँ, तो वन सेकंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। अभी के लिए प्रोग्राम एक छोटी सी अनाउंसमेंट शामिल की थी चाइल्ड हुड वैक्सीनेशन के हवाले से। सो अब इसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक को प्ले कर दिया जाता है, इसके बाद रहती है आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड 97.1 एफएम एंड ऐप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलोर आज की सोलसी के साथ। प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आई हुई थी, कमर्शियल ब्रेक पर रही आपसे मुलाकात। अभी जो हमारा लास्ट सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है वो है म्यूजिक का, क्योंकि मैंने अपना लास्ट जो सेगमेंट रखा होता है ना आधे घंटे का, वो मैंने तकरीबन म्यूजिक का ही रखा, मतलब म्यूजिक ही रखा होता है, क्योंकि मैं बाकी जो चंक्स पे जो है आपके साथ गपशप करती रहती हूँ बाकी टाइम में, तो उस तरह से फरमाइशों को पूरा करने का टाइम भी नहीं मेरे पास मिलता, या मैं होता भी नहीं और मिलता भी नहीं है। सो इसीलिए जो है ना मैंने लास्ट सेगमेंट रखा होता है म्यूजिक का। अगर वो म्यूजिक के बारे में डिस्कस भी करेंगे, म्यूजिक कोई प्ले करवाना चाहें प्रोग्राम में करवा सकते हैं, या फिर ये कहेंगे कि जो पहले आपकी फरमाइशें मौजूद हैं उनको तो पूरा कर दें हम। हर प्रोग्राम में शामिल होकर मौजूदगी का एहसास दिलाएगा, बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार बताए देते हैं 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। घर बैठी या वतीने मुझे सुन रही है, मैं भी शायद आप मुझे खाना पकाने का कोई सोच रही हो कि रेसिपी कोई सलू राज को बताई जाए, मैं अगर कोई रेसिपी मुझसे पूछना चाहते हैं तो चाहते हैं कि मेरे तरीके से बनाई जाए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सवाल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। मेरे प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल करवाया था, और मेरे ख्याल में उसके आवाज़ ने इसके सामने बहुत ज़्यादा कर ली थी, और अब मुझे लगता है कि प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक भी प्ले कर देनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपको अपनी आवाज़ सुनाई जाए। अभी के लिए जो है मेरे पास एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक सामने अचानक से आया, तो मैंने सोचा कि उसको प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए, फिर उसके बाद आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कोई ट्रैक सुन लूँ। रूह पोश मूवी से लिया गया ये ट्रैक, आइए सुनते हैं इस ट्रैक उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप, मिलते हैं इस खूबसूरत सी आवाज़ के उस पर।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। सीटियों के साथ साथ आपका इस्तकबाल करते हैं, एक बार फिर से वेलकम करते हैं तमाम सुंदरी समाधक को प्रोग्राम में जिसका नाम है लंच बॉक्स लाउंज। अभी लिए उसी के साथ साथ जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बीच में आकर तंग भी कर दिया जाए। रुख पोश मूवी की बात की जाए तो बहुत मजे की मूवी थी, मैंने इसको 2-3 दफ़ा देखा, मुझे बहुत मजे की लगी। खैर इसमें इसको ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि फिर हम लड़कियां जो है ना वो ख्यालों में खो जाती हैं कि ऐसा भी होता है तो वैसा भी होता है। सो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, खास करके लड़कियों को। अपनी ज़िंदगी में आने वाले फ़ैसलों को अपने तक महदूद रखें, अपने फैसले ज़िंदगी के फैसले खुद लें, ना कि दूसरों को बोलें कि वो आपकी ज़िंदगी के फैसले लें। जब आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं तो आप फिर उनकी मर्ज़ी से चलना शुरू हो जाते हैं, वो जब चाहे उनको ढील दें और जब चाहे उनको खींच दें।

कोशिश ये करें कि अपने आने वाले प्लान्स को सिर्फ अपने तक महदूद रखें, हर बात में किसी दूसरे को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, घर वाले जो हैं वो तो अपने होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब कोई प्लान करने लगती हूँ ना किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह की, तो मैं उस बात को सिर्फ अपने तक महदूद रखती हूँ, ना कि मैं उसको सबके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जब हम अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, दूसरों तक पहुँचा देते हैं और उनको बता देते हैं कि हम आने वाली ज़िंदगी में ये काम करने वाले हैं, तो फिर हम उस चीज़ को जो है ना उस तरह से नहीं कर पाते। और फिर कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। खासतौर पे उन लोगों से बच के रहें, क्योंकि मोमेंट जो है ऐसा होता है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके आपको वहाँ से यू टर्न लेना पड़ जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। जब आप नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो आपका दिमाग पकड़ पकड़ कर वो बातें लेकर आता है और आपको खुद ही आइडिया नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब होते हैं ना, तब हम वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें अंदाज़ा होता है, उसके बाद हमें पछतावा होता है कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे आगे कम से कम यू टर्न नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। और ख़ासतौर पर मर्द हजरात को तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपने फिर उन्होंने फिर को घर चलाना है, बीवी को लेकर चलना है, अज़र सी बात है, पूरी फैमिली जो है वो फिर एक इंसान के हाथ में आ जाती है। आइडिया नहीं होता उस टाइम पे कि एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर इतना कुछ संभाल लेगा, लेकिन वक्त जो है ना वो इंसान को सब कुछ सिखा देता है। वक्त एक ऐसी डोर है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहाँ से उठा के कहाँ पर ले जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आने लग जाता है। जब आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी तो वो हो जाती है, एक टाइम आता है कि आप उसको कैरी कर लेते हैं, आप उसको लेकर चल लेते हैं। उसी के साथ साथ अभी के लिए जो है वो मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश मौजूद है, प्रोग्राम उसको शामिल करते हैं। मैंने सोचा था कि बैकग्राउंड बीजीएम को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ताकि आपको सिर्फ मेरी आवाज़ ना सुनाई दे बल्कि ट्रैक्स भी सुनाई देते रहेंगे, क्योंकि लास्ट सेगमेंट हमारा हम रखते ही जो है वो म्यूज़िक का ही है। ख्वाब में ही खो जाना तेरा। बस मुझे ट्रैक मिल जाए, मुझे ना दरअसल ढूंढने में जो है ना बहुत दिक्कत महसूस होती है, और फिर उसके बाद एक तो मिलती नहीं है, और अगर मिल जाए तो वो फिर उस चीज़ का उस तरह मज़ा नहीं रहता। बर है, अभी हम उस ट्रैक को ढूंढ लेते हैं और उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। अभी तक के लिए एक बार फिर से बोलेंगे, कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ, हमेशा की तरह हमारा साथ आपका साथ रहेगा, ठीक हो ठीक 2 बजे तक।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एक बार फिर से लंच बॉक्स लॉन्च, और आवाज़ सुन रहे हैं आप हमेशा की तरह हमारी ही। इतनी दफा वेलकम अगर मैंने घर में किया होता ना तो मेरी कितनी इज्जत बनी होती। खैर, अभी उसी के साथ साथ जो है वो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का साथ अच्छा लगा होगा। आज का जो टॉपिक था वो भी आपको पसंद आया होगा। उस टॉपिक के बाद से अगर दोबारा भी डिस्कस करना चाहें तो हम उसको दोबारा भी कंटिन्यू कर लेंगे कल आकर। मैं मोस्टली कोशिश ये रहती है कि आप तक वो तमाम सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए जिनके बारे में आपको नहीं इल्म, और मुझ तक भी वो बातें पहुँचाई जाए जिनका मुझे नहीं इल्म। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि कुछ बातों का मुझे भी इल्म नहीं होता और कुछ बातों का आपको नहीं होता। सो इसी तरह मिलते जुलते इन बातों को इधर उधर करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होती है कम्युनिकेशन, और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट। अभी मेरे पास एक और छोटी सी फरमाइश मौजूद है। सो प्रोग्राम में वक्त भी काफ़ी कम रह चुका है, तो अभी करते ये हैं कि उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं और फिर उसके उस बार चाहेंगे आपसे इजाज़त। तो अभी तक के लिए स्टे ट्यून रेडियो फ़ज़ा 97.1 एफएम एंड ऐप। इसके उस पार फिर चाहेंगे आपसे इजाज़त। अभी तक के लिए इस ट्रैक को सुनिएगा और साथ दीजिएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुनिए लंच बॉक्स लॉन्च। उसी के साथ साथ वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान। अल्लाह हाफिज़।

0: जाए।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: पर आजकल हाथ
1: फजा 97 के तमाम लिसनर के लिए एक और सॉन्ग सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड टैप।

दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी खुद को दूसरों से कम न समझें। हर इंसान अपनी जगह मुनफरिद है। किसी कामयाबी देखकर मायूस होने के बजाय अपने सफर पर यकीन रखें, क्योंकि हर शख्स का वक्त अलग होता है। क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराने से जिस्म में ऐसे हार्मोन खारिज होते हैं जो ज़हनी दबाव को कम करने में मदद देते हैं। यानी एक मुस्कुराहट न सिर्फ आपका बल्कि आपके आसपास के लोगों का दिन भी बेहतर बना सकती है। तो आज किसी ऐसे शख्स को ज़रूर मुस्कुराए। अब चलते हैं अगले खूबसूरत खाने की तरफ। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल चल रही है तो याद रखिए, मुश्किल वक्त हमेशा मुस्तकिल नहीं रहता। रात जितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी दुआओं को मजबूत रखें और रब करीम पे भरोसा रखिए। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि फजा आपका अपना रेडियो है।

0: commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
5: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

वेलकम बैक। अगर आपको अपनी जिंदगी में एक चीज बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? अपनी राय हमें जरूर भेजिए। आपके खूबसूरत पैगामात और आरा हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं। हमें मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए 0115710971 टेक्स्ट कीजिए अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ। हम आपके मैसेजेस के मुंतजर हैं।

क्या ही जबरदस्त इंतखाब था। उम्मीद है ये नगमा आपको भी इतना ही पसंद आया होगा जितना हमें आया। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1। और मैं हूँ आपका मेजबान, आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। अगर आप अभी भी हमारे साथ शामिल हुए हैं तो खुश आमदीद। अगले कई लम्हात तक अच्छी बातें, खूबसूरत मौसीकी और आपके पैगामात हमारे साथ रहेंगे। चलिए अब नजर डालते हैं आपके खूबसूरत पैगामात पर। पहला पैगाम आया, ये पैगाम है उस्मान साहिब जलम से, लिखते हैं कि अपने तमाम घर वालों के साथ सफर में रेडियो फजा सुन रहे हैं। आपका प्रोग्राम सफर को बहुत खूबसूरत बना देता है। मेरी तरफ से वालदा मोहतरमा के लिए खूबसूरत गाने की फरमाइश कबूल कीजिए। उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका सफर आसान और महफूज फरमाए। आपकी फरमाइश भी अभी शामिल करते हैं।

सुनते रहिए फजा 97.1 FM। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिश को और आपके मैसेजेस को पढ़ के सुनाया जाए तो अभी हमें मैसेज कीजिए। ये गाना उस्मान साहब की तरफ से उनकी वालदा के लिए।

माहौल कुछ उदासी की तरफ जा रहा है। एक अगला पैगाम है आयशा मीरपुर आजाद कश्मीर से, कहती है कि मैं इम्तिहानात की तैयारी कर रही हूँ, दुआ कीजिए कामयाबी मिले और मेरे दोस्त मरियम के नाम एक अच्छा सा गाना प्लीज़। आयशा अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए, आपकी दुआ भी कबूल हो और हम आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM, क्योंकि फ़ज़ा आपका अपना रेडियो है।

दोस्तों, ज़िंदगी में हम अक्सर गलती करते हैं। हम खुशियाँ आने का इंतज़ार करते रहते हैं, हालांकि खुशी इंतज़ार से नहीं, शुक्र से पैदा होती है। जिस दिन इंसान ये सोच ले कि मेरे पास जो कुछ है वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसी दिन ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत महसूस होने लगती है। अगर आप इस वक्त दफ्तर में हैं, दुकान पर हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, या घर में चाय का कप हाथ में लिए बैठे हैं, तो एक लम्हे के लिए मुस्कुराइए, क्योंकि शायद किसी और के लिए आपकी यही मुस्कुराहट उम्मीद बन जाए। चलते हैं आपके पैगामात की तरफ। हमारे पास एक खूबसूरत पैगाम आया वकास भाई रावलपिंडी से। कहते हैं कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा रहा हूँ, ट्रैफिक काफ़ी है, लेकिन आपका प्रोग्राम सुनकर सफ़र आसान लग रहा है। मेरी अहली और बच्चों के लिए एक खूबसूरत गाना प्लीज़। वकास भाई, अल्लाह ताला आपका सफ़र महफूज फरमाए, आपकी फरमाइश अभी शामिल करते हैं। और एक और मैसेज आया सिदरा गुजरात से, कहते हैं कि मेरा आज इंटरव्यू था, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। सिदरा, पूरी रेडियो फजा की टीम की तरफ से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बेहतरीन फैसले फरमाए, आपको कामयाबी नसीब करे। चलिए अब सुनते हैं खूबसूरत सा नगमा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

याद रखिए कि सूरत बगैर सीरत के ऐसा फूल जिसमें कांटे ज्यादा हों और खुशबू बिल्कुल भी ना हो। सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

मैसेज की तरफ पढ़ते हैं। फातिमा लिखती हैं कि गाना प्ले कीजिए दिल दिया गल्ला। तो सुनते रहिए फजा 97.1। लीजिए फातिमा, आपके लिए गाना प्ले कर दिया।

करते हो, लिखूं तेरी सदाएं, पढ़ लूं सारी दुआएं, फिर भी तू राज ना आए, हम तेरे खास सताए, माना हम मर ना पाए, जी के भी कर ना पाए, तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

0: ஒன்னு கேளுக்க.
1: இட்ஸ் கமர்ஷியல் டைம்.
2: ஓகேனா, காய் கா குஷ்பு, கோஷ்ட் கி ஜாயகா ஓர் பிஷாவர் கா மெஹமான் நவாஜி.
3: கஹான் கான் பாய், பிஷாவர் பஹுஞ்ச் கே க்யா?
2: நை ஜான் கே டூட்டே, பிஷாவர் அப்னே நோதிகம் மே ஆ கே நா யாரா. ஜி ஹான், தயார் ஹோ ஜாயே, கியூன்கி 27 ஜூலை 2026 கோ ஹோனே ஜா ரஹீ ஹை பிஷாவரி டேரா கி ஷான்தார் கிராண்ட் ஓபனிங்,
3: ஜஹான் லஜீஜ் சன்மாரி ஓர் ஜர்சி கடாஹி கி குஷ்பு ஆப்கோ கீஞ்ச் லாயேகி.
2: தம்தார், குஷ்புதார், லேம்ப் காப்லி புலாவ் தில் ஜீத் லேகா.
3: அஸ்லி பிஷாவரி ஜாயகே வாலே சப்லி கபாப்
2: ஓர் அங்காரோ பி பியார் ஹோனே வாலா லஜ்வாப் அஃபானி லேம்ப் டிக்கா.
3: அப் ஓர் நா சுனாவ், பூக் லக் கயி ஹை.
2: தோ பிர சுன்னா சோடோ யாரா, பஹுஞ்ச் ஜாவ் ஜல்தி.
3: அப்னே தோஸ்தோ கோ புலாயே, ஃபேமிலி கோ சாத் லாயே ஓர் பிஷாவர் கே அஸ்லி ஜாயகோ கா சஸ்கா லே.
2: டு ஸ்டே காண்டாக்ட் 07440016816, அட்ரஸ் 35 லெண்டன் புலிவார்ட், லெண்டன், நாட்டிங்ஹாம், 97 2ET,
3: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
2: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
8: आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM.

0: just be sad.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर दिन

0: पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-732।
2: अरियाना सुपरमार्केट 126132 ग्रैसिंगटन रोड NG8 3P नॉटिंघम मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM संडे 10 AM to 8 PM अरियाना सुपरमार्केट फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट प्राइसेस यू विल लव।
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
8: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
7: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
8: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
7: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
8: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
7: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
8: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
7: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
6: जिमें बदलां दे ओले होया चन्न।
5: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
8: Radio Fazan 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.

0: GCSE और SATs exams बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
1: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
0: लासा ट्यूशन सेंटर?
1: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
0: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
0: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: You are safe. We are playing. Fazan 97.1 FM.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: Fazana 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: Bigger, bigger, and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन,

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
7: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: ओखाना काय के खुशबू गोश्त की जायका और पेशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
2: पेशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97।
2: यू आर लिस्टिंग 97.1 एफएम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी

0: prices you'll love. Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
1: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
2: You are listening 97.1 FM.
3: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
4: You are playing. We are playing.
5: Fazan 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: ठहरिए जरा. ये commercial तो सुन ले.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793.
8: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide

0: Confidence Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: डिलीशियस प्रीमियम स्टेक, जूसी बर्गर्स, क्रीमी पास्तास और फ्रेश ड्रिंक्स, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी, वाइब भी।
3: You are listening 97.1 FM.

0: You are listening 97.1 FM.
1: सच है प्रिया, सब कहते हैं मैंने तुझको भी।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: क्या आप जानते हैं मैं को?
1: It's commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932.
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का.
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
1: Yeah.

0: कसम।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा, रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: यू आर लिसनिंग टू रेड
1: टेरी. जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए. गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 0759315069. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ. ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793.
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715.
9: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.
6: फजान 97.1 एफएम,
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है.
8: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
9: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
10: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
9: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
10: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने.
9: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
10: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
9: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
11: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
9: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
12: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
13: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
14: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
13: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
14: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
13: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
14: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
15: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
13: Park Foods, जो नाम है मायार का.
16: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
17: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
7: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
17: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
7: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
17: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
7: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
17: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
7: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
17: टेस्ट भी वाइब भी.
18: You are listening 97.1 FM.